हे परमात्मा, मैं तेरे दर दा भिखारी हां, मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने, गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री वाहिगुरु परमात्मा

काल समरथ है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुझे आपे शिष्ट से जिया आपे सब इको शब्द वर्तदा जो करे सोहोली वड्याई गुरमुख दे प्रभ वड्याई

प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, बाही जिना की पकड़ी है, सिर की जय बाही ना छोटी है। असि जकारा बुलावे, तुम सारे उच्ची वाह करनी है, सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

0: हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भगती करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आते भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम ना जफे पान का हुक्म दिता। प्रहलाद दिल विच आवाज आई पाल तत्ते थमा नु जफिया आपके तेन रम रख लो। प्रहलाद ने थम ना जफी पाली पर ओदा वाल भी वेंगा ना होया। उस विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
1: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत विच मेरी औलाद पुठे पाट पाया जा रहे। अज तो बार फिर करी ऐसी गल की तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरना किस्म भी भुल जाएंगे।

तेज बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

जिन्हां नूं दुश्मन भी अपने प्यारे लगते हो। भाई कन्हैया ना अपना ना दुश्मन, गुरु दा मुख जान के पानी पिला दिंदा। ओ भाई कन्हैया जिन्हों गुरु कलगीधर पातशाह ने वह बख्शिश की थी, कहा जिथे भाई कन्हैया तू पानी पिलाना आ मलम भी फटा दे ला दिया। आ सिख दा प्यार है, आ सिख दी भावना है, जिसनों बगाने भी अपने लगते बस वो असल विच सिख है। पर होवे कोई भाई कन्हैया।

भाई मंद जी राह ही भुल गए, जिस राह तो गए सन वह राह ही भुल गए। तुरिया आ एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मंझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदे आ गाउंदे आ। बरसात जोर दी पर जदों भाई मंझ जी उथों दी लंघण लगे पुराना खूह, भाई मंझ जी खूह विच डिग पए। अपने आप नू संभालिया, लकड़ां नू गोचिया, लकड़ा कितने डिग ना पे, पर एकदम खूह विच डिगे। पर इधर साहब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन का आनंद माणदिया एकदम संघासन तो हिले। भाई गुरदास जी नू कहन लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मंझ डिग पे। जानी जान सतगुरु संघासन तो उठे, सिखां नू नाल लिया, कुछ रस्से नाल लै ले। अज उस थां ते आ पहुंचे जिथे भाई मंझ खूह विच खलोता, सिर ते लकड़ा है। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह आए, भाई मंझ नू तकिया ते गुरु अर्जन देव पातशाह दा मन भर गया, नेत्रां विचों जल विया। ते भाई गुरदास वल तक के कहण लगे, ओ भाई गुरदास तके आ मेरे प्यार वाले, जिन्हां दा मन नीवा निम्रता ते प्यार दे विच रहण वाले। लकड़ां नहीं डिगण दित्तियां, सिर ते लकड़ा चुकियां, भाई मंझ खड़ोते। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने उपरों प्यार नाल इक बोल

ए नहीं पता कि शैतान गुरु अर्जुन देव पाछा बचन कह रहे खूह विच खलोतिया कह लगे ओ सिखा जे मेरे नाल प्यार है मैनू बाहर कढ़ना चाहुंदा है ते फिर कृपा कर आ गुरु दे लंगर दियां लकड़ां पहला लकड़ां नू बाहर कढ़ दे फिर मैं भी बाहर आ जावांगा किते सेवा ना व्यर्थ चली जावे इस वास्ते ते लकड़ां चुकी खलोता किते लकड़ां गिलियां ही ना हो जाए अज दी सेवा व्यर्थ ना हो जावे जदों भाई माझ जी ने कहा ते गुरु अर्जन दे पातशाह दा फिर मन भरिया कहन लगे ओ भाई गुरदास आ वेखे आ मेरे प्यार वाले सिख हन आ रूप है सिख दा जिन्हां दे हिरदे विच भावना है जिन्हां दे हिरदे विच प्यार है क्यों ना मैं ऐसे सिखां तो वारी जावां क्यों ना ऐसे सिखां तो कुर्बान जावां जेड़े मेरे तो कुर्बान हो जांदे गुरु तो अपना आप निशावर कर जांदे परवाह नहीं करदे ओ भाई मांझ ते इम्तिहान दा परचा तां पिया पर भाई मांझ इम्तिहान दे परचे विचों पास हो गया भावी ने से ऐसी खेल खेडी पर हुण भाई मांझ उस इम्तिहान दे परचे विचों पास होके विखाया।

पांड आप ते डिग पे पर पांड नहीं सके। गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहला लकड़ा नु बाहर कढ़े, फिर रस्से नाल पाई मांझ नु जदों बाहर कढ़िया ते गलवकड़ी विच लै लिया। इतना घुट के प्यार कीता, इतना प्यार कीता ते गुरु पातशाह ने फिर वार भी दे दिता। मंज गुरु का गुर मंज प्यारा, मंज गुरु का वोह था जग लंघना। गुरु अर्जन देव पातशाह ने फिर भाई मंज नू मंजी बख्शिश की थी। भाई मंज जिन्हां ने सतगुरु नू सेवा करके प्यार करके अपना आप गुरु तो निशावर करके पा लिया। आओ भाई आप भी जे गुरु दे सिख हां ते फिर भाई मंझ वांगू किते गुरु नाल प्यार कर लेंगे, गुरु तो वारी हो जाइए। ताई का गुरु बख्शिश करेगा किते मन नीवा हो जावे, मत उची हो जावे, एहो जा हिरदे विच प्यार जाग पवे ते फिर भाई गुरु तो सदके गुरु भी बख्शिश करेगा, उस सिख नू गल नाल ला लवेगा। आओ भाई मंझ दे गीत गा रहे हैं। डिग पया पर पंड न सुटी, खड़ा अडोल ओ सिर ते रखी, सतगुर आए बचाओ। आओ वे सतगुरां ने बांह फड़ ली, बख्शिश कर दिती। जे भाई मंझ ते बख्शिश हो गई, आओ भाई कि साडे ते भी बख्शिश हो जावे, कि आपां भी भाई मंझ वांगू गुरु की सेवा विच लग जाइए ते फिर साडा लोक सुख।

जीव जंत उस पानी अंदर रहण वाले हन, फिर तेन उन्हों का भार से जरूर व्यापदा होगा। इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं कितना पानी, ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा।

सिमर सुख पाओ सिमर प्रभु अपना अपने प्रभु नु सिमर उस परमात्मा दे नाम दी आराधना कर ते जीव वेख फिर सिमरन विच सुख कितन है। ते साहिबा ने अमृत वेला क्यों चुने? जीव कहिंदा है महाराज होर भी किसे टाइम ते नाम जपे ही जा सकदा है ना, पर सैम आखदे ने नहीं जीव अमृत वेला क्यों जुनेंगे? अमृत वेले नाम जपन लई क्यों सतगुरु ने हुक्म कीता है? कहिंदे ने जो अमृत वेले बिरती लगदी उस तो बाद नहीं लगदी, क्योंकि आगाध ही प्रभात तो इस संसार दी वेख लो। ए नहीं कि कितने नाम दी ही कहेंगे, ये सारे संसार दी आगाध जेड़ी ये नाम तो है अमृत वेले तो प्रभात तो है। ते जीव तू प्रभाते क्यों नहीं उठदा? तू प्रभाते ही उठ के परमात्मा दा नाम जप नाम दे विच लीन हो के ते वेख कितना सवेरे आनंद आउंदा, कितना मन जुड़दा, कितना एकाग्र चित हुंदा। साहिबा ने फरमान कीता है कि जीव अमृत वेले ही उठ के नाम जपना तेरे वास्ते ठीक है।

0: कैसा ख्याल?
1: जेड़े सिर साईं दे अगे निवदे नहीं, जेड़े मन चुकदे नहीं, जेड़ी रसना नाम जपदे नहीं,
0: कहिंदे रसना नूं भी कट दे,
1: ते जेड़ा सिर चुकदा नहीं परमात्मा दे अगे कहिंदे सिर भी कट दे।

अमृत वेल उठे स्नान करके सिमरन में लग जाए। बड़े बड़े लिखारियों ने बहुत सुंदर ख्याल लिखे अमृत वेले मनुख जदों उठता है सुंदर हवा चल रही होंगी रमणीक नजारा होंदा है तारे टिम टिम करते होंगे मन खिलिया होंदा हवा राणी दूर दूर तो खुशबुआ लैके चोलियां पहर पर लुटांदी है ते ओ अकाल पुरख अंतर जामी अपनी दरगाह विच बैठा चोलियां पर पर के जीवां दी चोली विच नाम दी दात पाउंदा ते असी उस वक्त सुते हुंदे करिए अरदास सतगुर कृपा कर ऐसा जीवन सानू भी बख्श दे कि अमृत वेले असी भी उठ के तेरी ओ दात हासिल कर सकीए जो सारे मनुख कर रहे हैं ऐसे मनुख हैं विरले विरले पर असी भी उन्हां दे विच शामिल हो जाइए। गुरु दरबार विच आए हां ते बेनती करिया करिए सतगुरु दी कृपा करो असी भी ऐसा जीवन बना सकीए कैसा कर

पुरुष शरण कृति भरतनारद संपदा वसा पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तिन अस्ते।

इथे शिर मध्यासन बारीक भजन ज्ञान सुद्धा फुलावून होती आज्ञा प्रकाशन मकरू आणि सुद्धा बोलावून आपने स्थान लोग माया सुखान दूर करने पर खास कार्यरत करने उन्हें कल के माँ पत्र बाबा जी प्रकट व्यक्ति भक्ति वाहे भूमिका सुन सकता।